0: खाती हला हेतलियानी हम आला तिले बने ई खाती हाले हम आला तिलियानी खाती हला हे के तिलिया मेना
1: वेले
0: वसुत बड़ खड़ा वाली बा हे मेने ले
1: थे मा खातिला
0: सोए नवतल दिन अशुत बल यीशु स्वास के नाम में फले आओ
1: देखे ना मा खातिला रे तेरे बे
0: ई हम आला के दिया ले हम आ
1: तेरे बे दे दे रो वासिला हालेलुया
0: इतेलिया माला माती हाना हेले केती लिहा मेले मा तिलिया ले ओबरे सुति वेवा स्वामी इन वास ओबा सुदाउ करन ने किने केना